ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सरफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें

0: हुसैन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
0: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

एक शेर तुहाड़ी नजर करदा हजूर। अज दी रात दी खबर दसा, अज दी रात दी खबर दसा, ख्वाब विच सोने आए हुए सन, बड़ी अदा नाल दिता जनाब बोसा, मस्ती विच अज खूब छाए हुए सन, दुख सुख दियां गल्लां खूब होइयां, बड़े अरसे दे दिल घबराए हुए सन, तको तकी अफजल अख खुल गई, जाम कौसर दे लबा नाल।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: के दोष पर उड़ते परिंदों के परों के ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टीरियो और 100.6 एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। अगर आप डीएबी पे सुनना चाहें तो कीतले इल्कली स्किप्टन लीड्स हेलीफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेल्सन अक्रिंगटन मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट लंदन में आप सुन सकते हैं। और अगर आप अपल एप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी आप सुन सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो आप हमें सुनना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पे सुन सकते हैं www.sunrise.radio। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का जिन्होंने पिछले 2 घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रणाम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी और एक प्यारा सा पैगाम है आप दोस्तों के लिए कि द सनराइज रेडियो लिसनर्स चॉइस अवार्ड्स 2026 आर कमिंग सून सेलिब्रेटिंग द बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस वेन्यूज एंड आर्टिस्ट यू लव। Voting will be exclusive to listeners, club members. So join free now at sunrise.radio and keep listening for more details. तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।
1: हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद बेलव्यू रेजिडेंसेस। डिस्कवर स्टनिंग 4, 6 and even 8 बेडरूम होम्स। कॉल 0127-428-8252।
2: सनराइज रेडियो Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

0: यार दीवाना होता है। अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत हिट ऑफ द आवर की शक्ल में सुना, तो दोस्तों इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 11:15 से, यानी कि 11:15। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा प्यारे दोस्तों के लिए। चौधरी मुजफ्फर साहब, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप की जन्म से आपके तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं उनके नाम करते हैं जनाब। और गुलाम भाई आपकी जन्म से आपके पूरे स्टाफ के नाम, प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम और साइमा जी आपके नाम भी होगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत होगा। और दोस्तों याद रखिए 2 बजे तक गीतों का सिलसिला ही होगा। और अगर आप गीत सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। नंबर होगा 01274306666। फैंसी ए बिट ऑफ फन, विजिट सनराइज प्ले एंड हेल्प राज रेस बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज स्टूडियो रोश। Test your film knowledge with our Bollywood quiz or discover which Bollywood character you are. Play now at sunrise.radio and join the free Sunrise Listener Club to unlock even more. तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं जनाब कमर्शियल। कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। हीरा खान साहब, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा लगा आपने फोन किया और आपके दोस्तों के नाम ये गीत करते हैं, स्पेशली जनाब तारिक जुल्फी और मलिक इशफाक साहब के नाम, और उसके बाद नसरीन साहब आपने फोन किया, शुक्रिया फोन करने का। आने वाला गीत आपके नाम भी करूँगा और उसके बाद जनाब इसी गीत को मलिक इम्तियाज साहब आपकी पूरी टीम जो है उनके नाम करेंगे, जिनमें जनाब फराज और इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, उमेर, बाबर, तो आप सबके नाम भी गीत करते हैं और गुलाम भाई आपकी जन्म से आपके स्टाफ के नाम करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
1: 24 hours a day. No, sorry mate.
2: No, we don't have that part.
3: Have you tried down the road?
4: We can get it in, but it won't be for a few days.
5: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
6: Looking for a quality home to rent?
7: Whether you need a 1, 2 or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
6: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 07 7900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

जी दोस्तों, अभी आपने कमाल सानू की मत भरी आवाज में बहुत ही सुरीला सा गीत सुना, और अब एक और प्यारा सा गीत पेश करने जा रहा हूँ आप तमाम दोस्तों के लिए जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं, प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए जो जहाँ कहीं भी हैं जनाब सन्ना रेडियो को सुन रहे हैं, आपके नाम किया और

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही अब वक्त हमें बता रहा है कि जो वक्त हो चुका है वो कमर्शियल का हो चुका है, और कमर्शियल के बाद ही जो है हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन छोटा सा गीत सुन लेते हैं कमर्शियल तक।
1: साथी
0: मेरी जानू से सभी सुनने वालों के नाम
1: सुन तो जरा।
2: हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो बोलो ना।

0: जी दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा गीत सुना, इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 11:46 से, यानी कि 11:46, और हमें फोन किया तारिक जुल्फी साहब, शुक्रिया फोन करने का जनाब। आपने कहा कि आप अपने दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं, हीरा खान और मलक अशफाक साहब के लिए, उनके नाम किया। उसके बाद नौतान बहना, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आने वाला गीत जो कमर्शियल के बाद होगा, सदाबहार गीत आपके नाम होगा। और उसके बाद दिनेश भाई, आपने भी फ़ोन किया, काफ़ी देर हो गई, लेकिन मुझे पता है आप पुराने गीत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने फिर आपका नाम नहीं लिया, अभी पुराने गीत के साथ ही नाम जोड़ता हूं। तो उम्मीद रखता हूं आपको ये गीत ज़रूर पसंद आएगा। और इसके बाद चौधरी मुजफ्फर साहब, आपके नाम करेंगे इस गीत को, और इसके साथ साथ गुलाम भाई आपके नाम करेंगे, सफियुल्ला भाई आपके नाम करेंगे, और नवीद भाई आपके नाम करेंगे, और दीगर दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वासन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। मुना जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

गीत था, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा इस गीत को। और हीरा खान साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का आपने अपने दोस्तों के लिए, स्पेशली तारिक ज़ुल्फ़ी साहब और मलक इशफाक के लिए गीत सुनना चाह तो आपके नाम करेंगे। और प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी, आपके नाम भी, अमरीन साहब आपके नाम भी, तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और उसके बाद दोस्तों से मिलते हैं। और लगता है कि ये गीत लगता नहीं है बल्कि ये गीत आखिरी इस आवर का गीत है जनाब। और एक आवर ऐसे गुजर गया पलक झपते, पता ही नहीं चला, टाइम बड़ा तेज़ी के साथ जा रहा है जनाब, और वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है जनाब। अभी स्टार्ट किया था प्रोग्राम, अब इस आवर का प्रोग्राम ख़त्म होने को है और अगले आवर में मुलाकात का कह रहे हैं जनाब। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले आवर में मिलते हैं, बल्कि इसी आवर में मेरी और आपसे आपकी बात होती है, लेकिन गाना आखिरी है इस आवर का।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा और हमारी पूरी कोशिश होगी ये प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है इसे भी अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे गीतों के साथ सजाया जाए। तो जनाब, अगर आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं और किसी गीत के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666 और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करने का जो है वो वक्त हो चुका है और अब क्योंकि पहला गीत जो है एटा बदावर की शक्ल में आप दोस्तों के नाम करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दोस्त इस गीत को एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर और थोड़ा मस्ती भरा गीत है, आप दोस्तों के नाम करते हैं इसको, तो एंजॉय कीजिएगा और हमारा साथ ज़रूर निभाइएगा।
1: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewellery. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त 12:12 हुआ चाहते हैं, यानी कि 12:12। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद दोस्तों एक प्यारा सा गीत सुनेंगे आप। नदीम मंसूर साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आने वाला गीत आपके नाम करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। और मीर जुमान साहब, आप भी फ़ोन कर रहे हैं जनाब, बहुत अच्छा लगा आप इस वक्त फ़ोन कर रहे हैं। और आप जो हैं वो इस वक्त गाड़ी में और ड्राइव कर रहे हैं, और जो है वो सबीना के लिए आप गीत सुनना चाहते हैं, तो आपकी जानिब से टॉम साहब सबीना के नाम गीत करते हैं। और आपके साथ साथ इसी गीत को प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी करते हैं, और कमल साहब आपके नाम भी करते हैं।
2: My favorite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की प्यारी सी आवाजों में। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले गीत की जानेब। प्यारा सा गीत है आप प्यारी दोस्तों के लिए और मीर रवान साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं और साथ में रेडियो को भी सुन रहे हैं, तो जनाब आपके नाम वो गीत किया था, आने वाला गीत भी आप के नाम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप इस गीत को भी पसंद करेंगे। तो चलते हैं आपके नाम ये गीत भी करते हैं और उसके बाद इसी गीत को मलिक इम्तियाज़ साहब, आपकी पूरी टीम इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, उमेर, बाबिर और इफ़राज के नाम भी करेंगे और आपके साथ साथ दीगर जो दोस्त हैं इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे, गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम और ये गीत साइमा जी आपके नाम भी करेंगे। और रुकी बहना आपने फ़ोन कर रखा है काफ़ी देर से, माजे चाहते हैं आप अपने बच्चों के लिए वारिसा यासर साहिल के लिए गीत सुनना चाहती हैं तो उनके नाम भी करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। प्यारा सा गीत है इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इस गीत को पसंद करेंगे। तो चलते हैं सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, अभी आपने साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद दोस्तों एक प्यारा सा गीत होगा। लियाकत भाई, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कमर्शियल के बाद जो गीत होगा आपके नाम होगा, और आपके साथ साथ इस वक्त बाबर शाह पे दो शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली सिकंदर अली, उनके नाम भी और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को सुना, और अब जो अगला गीत आने वाला है ये भी अलका याग्निक का है, लेकिन इस दफा कुमार सानू की बजाय उदित नारायण जो है उनका साथ निभा रहे हैं। और यह गाना मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाजों में ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही प्यारा गीत था जो आप दोस्तों ने सुना, यकीनन आप दोस्तों ने इंजॉय किया होगा। और अब जनाब वक्त हमें बता रहा है कि कोई गीत नहीं होगा क्योंकि कमर्शियल का टाइम हो चुका है और कमर्शियल के बाद ही गीतों का सिलसिला जो है वो फिर से जोड़ेंगे। तो गुलाम भाई बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, बहुत अच्छा लगा आपने जो है फ़ोन किया और आप जो है वो सभी बड़े मज़े से काम भी कर रहे हैं और साथ में जो है वो रेडियो को भी सुन रहे हैं और गीतों को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आप दोस्तों के लिए जो है वो एक प्यारा सा गीत होगा क्योंकि आप सभी जो हैं इस वक्त सनराइज रेडियो को सुन रहे हैं। तो जो गीत मलका जी ने फरमाइश की वो गाना कई बार मैं यहाँ पेश भी कर चुका हूँ लेकिन जब मैं ढूंढने लगा हूँ अब वो गाना, ताकि ये पुराना गीतू का जो सिलसिला है वो भी पुराने गीतों में ही आता है तो लगा देंगे। तो अब जो है वो गाना ऐसे गायब हो गया सिस्टम से कि अब क्या बताएं। छोड़ूंगा मैं नहीं उसको, लेकिन मैं हैरान हूँ कि कैसे जो है वो यहाँ से गीत वो गायब हो गया है। चलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है बड़े छोटे शहरों में, लेकिन होना नहीं चाहिए। जब कोई फरमाइश करे तब तो अगर गीत मौजूद भी है, और कई बार मैंने वो गाना लगाया भी है, तो अब मैं जब उसको बातें भी कर रहा हूँ साथ में उस गाने को ढूंढ भी रहा हूँ कि कौन से सिस्टम में वो पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो हाथे नहीं चढ़ रहा है। तो छोड़ूंगा मैं नहीं, अभी कमर्शियल एक मिनट की है उसके दौरान मैं ढूंढ लूँगा इस गीत को। तो मलका जी फिक्र ना कीजिएगा, आपका फेवरेट गीत ज़रूर जनाब मिल जाएगा। तो गुलाम भाई आपके नाम, मलका जी आपकी जानब से जनाब रानी साहबा और जो है ना आपके साथ हैं हमारी प्यारी बहना आशा जी भी, उनके लिए भी आप गीत सुनना चाहती हैं और जिया जी के लिए भी आप गीत सुनना चाहती हैं। तो आप के लिए, आशा जी के लिए, जिया जी के लिए, रानी साहबा के लिए और स्पेशली आशा बहन के लिए। तो चलते हैं जनाब, पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:44 यानी के 44 minutes past 12। तो चलते हैं कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद जो मलका जी ने गीत की फरमाइश की उनका फेवरेट गीत उनके नाम करेंगे और लियाकत भाई और नदीम मंसूर साहब और हीरा खान साहब, तारिक जुल्फी साहब, नौतान बहना, दिनेश भाई और चौधरी मुजफ्फर साहब और सफीउल्ला भाई और इसी गीत को मूना जी आपके नाम भी करेंगे, प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: पैरन ये जुतियां हुई कसीगियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: वांट इवन मोर फ्रॉम सनराइज रेडियो? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

जी दोस्तों, सागर से गिरा है प्यार हमारा, मलका जी की फरमाइश पे ये गीत प्ले किया था और सोचा कि लगे हाथों अब गुलाम भाई का फेवरेट गीत भी प्ले कर देते हैं।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं कि आपने प्रोग्राम के दो हिस्से पसंद किए होंगे और कोशिश करेंगे इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करें। तो अगर आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं या किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहते हैं तो जरूर आइएगा, आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666। आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को एक प्यारे से गीत के साथ जो है शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। तो इस गीत को आप सभी सुनने वालों के नाम करेंगे, स्पेशली इस वक्त बाबर शाह पे दो शहजादे काम कर रहे हैं, बशारत अली और सिकंदर अली। सिकंदर अली आपने फ़ोन किया और शुक्रिया फ़ोन करने का, आपने कहा कि आप प्रोग्राम इन्जॉय कर रहे हैं तो आपके नाम और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। और गुलाम भाई आपकी जन्म से आपके स्टाफ के नाम और इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे। इस वक्त काफ़ी सहेलियाँ जो हैं वो काम कर रही हैं। जनाब इकरा जी सुनना चाहती हैं नजमा, इफ़त नाजिया, हमीदा, रबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा के लिए। और इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे इस वक्त सुन रही हैं प्यारी बहना सादिया जी और हाजरा जी उनके साथ हैं, उनके नाम भी करेंगे और अमरीत साहब आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल मज़े चाहते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद मिलते हैं।
1: The Hit of the Hour, brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही वक्त जो है वो हो गया है टाइम चेक का। टाइम चेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये प्रोग्राम का आखिरी आवर है मेरा और आपका साथ, दो बजे तक है। तो चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंड ट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:15, यानी कि 15 मिनट्स पास्ट 1। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद दोस्तों सुनते हैं प्यारा सा गीत मेरी जानब से सभी सुनने वालों के नाम।
2: ज़ायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब चलते हैं जनाब, एक और प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश करते हैं, तो अलका याग्निक और अमित कुमार की आवाज़ों में आप सभी सुनने वालों के नाम। और अब्दुल कयूम साहब राइजिंग हॉल से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपने सभी सुनने वालों के लिए गीत सुनना चाहा, तो आपकी जानिब से आपके सभी दोस्तों के नाम करता हूँ। और इसी गीत को गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम, प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम, और इस वक्त बाबर शाह पे दो शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली सिकंदर अली उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और अमित कुमार की आवाज़ों में प्यारा सा गीत सुना, और अब जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत होगा। रीटा बेटिया, आप लंदन में माज जाते हैं, अमेरिका में सुन रही हैं, और आप ये गीत सुनना चाहती हैं अपनी अम्मी नुसान बहना के लिए, तो उनके नाम और सभी सुनने वालों के नाम होगा ये गीत कमर्शियल के बाद।
1: 24 hours a day. Sunrise Radio. Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield, and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है, और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं, और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और अब क्योंकि वक्त बड़े नाजुक मोड पे है तो थोड़ा सा ये गीत सुन ले। ये भी बहुत ही प्यारा गीत है लेकिन थोड़ा सा आप सुन लें। नदीम मंसूर साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गीत की फरमाइश की, ज़रूर आपका गीत प्ले करूँगा। अभी तो थोड़ी देर के बाद जोहर की अजान का टाइम हो गया है, उसके बाद फिर कमर्शियल आएगी, कमर्शियल के बाद आपका गीत ज़रूर प्ले करूँगा, आप सुनते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।

हार जाते हैं, ये गीत आपको पूरा नहीं सुना पाए क्योंकि वक्त जो है वो बता रहा है कि जोहर की अजान का हो चुका है, तो चलेंगे सुनेंगे जोहर की अजान और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा। ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी समय नवी, आपने जहर की अजान सुनी और इसके साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जनाब। अब कमर्शियल का टाइम भी जो है वो आ चुका है जनाब, और कमर्शियल पे जाने से पहले हम पहले टाइम चेक करेंगे, उसके बाद ही कमर्शियल की जाने बढ़ेंगे। और कमर्शियल के बाद क्योंकि सदाबहार एक गीत पुराने की बारी होती है, लेकिन क्या है कि पुराना गीत है लेकिन सदाबहार पुराना गीत नहीं है। तो क्योंकि नदीम मंसूर साहब इस वक्त काम पे हैं, ब्रेक पे हैं, और उन्होंने इस गीत की फरमाइश की है, वो गीत सुनना चाहते हैं, तो इसलिए वो गीत कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे। और इसी गीत को जो नदीम मंसूर का फेवरेट गीत जो उन्होंने इस वक्त, उनके बहुत सारे ढेर सारे फेवरेट गीत हैं, लेकिन इस गीत की उन्होंने फरमाइश की। तो गुलाम भाई, अदल क्यूम साहब राइजिंग हॉल से, हीरा खान साहब, लियाकत भाई और जनाब तारजुल्फी साहब, दिनेश भाई चौधरी, मुजफ्फर साहब और जनाब सफीउल्ला भाई और दीगर दोस्तों के नाम भी होगा। तो अब कमर्शियल पे जाने से पहले टाइम चेक कर लें तो अच्छा रहेगा। टाइम चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:46, यानी कि 1:46। तो चलेंगे कमर्शियल की जाने। कमर्शियल के बाद नदीम मंसूर साहब की पसंद पे गीत दिल है कि मानता नहीं, वो गाना, और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप सभी ने पसंद किया होगा। और नदीम मंसूर साहब की पसंद पे ये हमने गीत जो है पेश किया था। और दोस्तों, अब वक्त हमें बड़े नाजुक मोड़ पे ले आया है, जहां हम कहते हैं हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। तो दोस्तों, मुझे अमर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगवान एंड गुड बाय।
1: मुझे

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंगम। Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026, three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? Shipley College आपकी मदद कर सकता है. Shipley College मुफ्त में English, Maths, ESOL courses. चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं. बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं. मज़ीद मालूमात के लिए Shipley College पर वेबसाइट जाएं.

0: इन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
3: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274733732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
4: तेरी तमक

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: My favourite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-7473-5043 पर कॉल करें।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: रिया कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Ladies and gentlemen,
3: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
4: Number one.

0: something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste and something new.
1: जुतियां सस्ता सोना नहीं मिली। चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहने तीला सिर्फ दो पौंडना कान सलाने ना एक पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सुना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
1: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274-488-935।

मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: कफन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste and something new.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
3: Hey yo, it's Intenso, and we're back again alongside the Mona. What we tell them?

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।